चूला वन्नो ले ना चला दाना होगा तो ना कोसा चूला एना लिंदा दीमा वरिगल लगे आएं का तू ताके दागा दा दा दा दागा दागा दा दा नो बे मोल डोमिंगो इन फिएटा ला हैमिल्टन फिएटा ला हैमिल्टन चार्ली क्रूस मिली के साथा ऑप्टिमो पापी इ पे वामो आ टेनर टो एल मुंडो लो सापाटिटो रोटो आई डू दी